विश्राम मंदिर तया तत्सनातनो तनोर्मदीश्य भक्तिरसामृत सिंधुर्भवतु सदायं प्रमोदायं भक्तिरसामृत सिंधुर् चरत परिभूत काल जाल धीय भक्त्य मकरान शीलता मुक्ति नदिकान नमस्यामि भक्ति रथस्तपस्तुतिरखिल भगवन मंगल प्रसंगस्य अज्ञेनापि मया सक्रियते क्रियते सुहृदां प्रमदाय एतस्य भगवद भक्ति रसामृतोपयो निधे चत्यार खलु वक्षन्ति भागा पूर्वा दयक्रमा तत्र पुण्यो विभागेऽस्मिन् भक्तिभेदनिरूपके अनुक्रमेण भक्त्यव्यं लहरीनां चतुष्टयम् आद्या

प्रकृति आत्मा सूर्या प्रेम अनुरूपिता तत्रादो सुष्ठु वैशिष्ट्यम मश्या कथयतुम स्फुटम लक्षणं क्रियते भक्ति रुत्तमाया सतानुमतम अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञानकर्मार्थनावृतम

आइए अब संपूर्ण ध्यान एवं श्रद्धा के साथ विनियोग सहित आद्याशक्ति भगवती दुर्गा के परम दिव्य कवच का पाठ।